झूठी हो सकती है, पर दौलत झूठी नहीं हो सकती। सोना सुच्चा है, हाथ सुच्चा है, ना बंदा।

प्यार करके प्यारा आपे खिचिया तुरिया। प्यार विच इनी खिच पैदा कर, वो आपे तेनू लभदा फिरे, तू ओनू लभन ना जावे बल्कि तेनू वो लभदा फिरे। ऐसी चिंग ला दिती, ऐसी रचना रच दी उस राजे दे अंदर, धन गुरु नानक खिचे चले गए। राजे शिवनाब दे प्यार ने गुरु नानक साहब नू संगला दीप खिच ले। कि प्यार करना सानू भी आ जाए, या इहो जिहा प्यार करना सानू कोई

0: का बधावन रहे गुरबिन ज्ञान हो ओ गुरबिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी तो छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है
2: आसरा उसका आधार था मैं देख सेवादार हाँ
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो
2: आप उतर ले पी ओ ले पी
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हो
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे
2: कागू हंस करे कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है तुसी इंज करो सिर्फ गोलवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन कर दिया ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वाल ले जाएंगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: कितनी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

छाया है उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ए पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चितवदे सारे ही चंगा चितवदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू इनिया बख्शिशा कीतिया हैं इनिया रहमत कीतिया हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

प्यार नाल सुनियो ये नहीं करता कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसा चीजा बंदिश के गवैशी में जिसनों बिखड़े टेढ़े ढंग में थोड़ा जा गाया जाता है। ये आम जिन्हें सजना जा भैणों ताल सुर की समझ ना हो तो कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा होता है जिदे नाल चीज का समुचारा समाया जाता है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणा जा वीर लय सुर के अंदर बोल सकन तो इस चीज़ नाल बोलन, तो नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

0: अर्थ है, शेर ने अपनी खुराक ली बकरी नु फड़ लिया है। होया कि
1: छीप जूती बकरी ते मर्दी होई हड़ हड़ हसी।
0: क्यों?
1: छी पुछे बिस्माद हो इत असुर के तरहस रहसी।
0: छी कहता है मैं चर्ज हां, तू मेरे फंदे विच है, मैं तेनू पकड़ लिया, तू मेरी खुराक है, मैं तेनू खा जाना ते अपनी आंदरां तृप्त करनिया हन ते अपना पेट पालना। पर मैं इस चर्ज इस गलों हाँ भी जदों मैं तेनू पकड़िया तेनू तेरे सामने मौत दिसदी है, तू फिर खिड़खिड़ा के हस रही है, क्यों? रीजन की है? छी पुछे विस्माद होए इत अवसर इस समय ते कित रहस रहस्य। तू किस खुशी दे अंदर हस रही है, तेनू हासा क्यों आ रहा है? जवाब है
1: छीप जूती बकरी मर्दी होई हड़ हड़ हसी। छी पुछे विस्माद हो इत अवसर कित रहस रहसी। बिनो करें दी बकरी बिनों करें दी बकरी उतर असाडे कीचन खसी। अकत धूड़ा खाद्या अकत धूड़ा खाद्या को खल उखल विनसी।
0: खादा की अकत धूड़ा, सजा की मेरी खल पुठी करके ला के शरीर तो जुदा कर दे। मैं हसदी यूं हां भी सिर्फ महज अकते तो धूड़ा खाण दा सदका मेरी औलाद निकम्मी हो गई ते मेरी पुठी खल लह गई है सिर्फ अकत धूड़ा खाण करके। फिर सुनो
1: हाँ

जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगा गुण गावत के पुत्र सुमैल सच्चे के गुणगा गुण गावत तेरी पुत्र सुमैल बिन सजाए हो मैं दुख है जन्म कर्म।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तोता गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
2: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
2: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लै गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लै गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
2: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टैनिन भर के पानी कैसे ना?
2: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
2: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
2: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

फिर तेरी देही किसे काम नहीं आउनी, ए राख दी तेरी हो जाएगी। इसलिए गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन परदेसी वे, आओ करे तू क्यों भटकदा है, ए जो कुछ तेरिया अखां वेख रही हैं, ए जो सपना अर वेखना, ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं, नानक के हो। इसलिए भाई अपने निज घर विच आ, विचार कर जिस कार्य लई तू आया, तैसी वस्त विसाहिए जैसी निभ है नाल, वस्तु ओ कठी कर जो तेरे नाल चलन वाली है। ए तां जो कुछ तेरिया अखां वेख रही हैं, जदों भी प्राण पंखेरू उड़न गए, ए शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए मेरे मन परदेसी वे, तू परदेश विच आए, ए जगत एक सराय है, जो मनुख आया है सराय दे विच बैठ, ते सराय नू मुसाफिर खाने नू जेड़ा मनुख अपना घर समझ के बह जांदा है, उनू कोई सियाना नहीं कहेगा, उनू कह देंदे हन भाई ये कोई मूर्ख है, क्योंकि मुसाफिर खाना है। राती आउंदा है मुसाफिर, प्रभाती तुर जांदा है, ते जे उस नू जफा पा के बह जावे भाई ये मेरा है, ता फिर सियाणप नहीं। इसलिए तू परदेसी है। धन गुरु रामदास पातशाह शब्द विच कहंदे हन, मेरे मन परदेसी वे, आओ करे अपने निज घर विच आ भाई, अमृत वेले उठ के इशनान करिए, ते फिर सत संगत विच बह के जपिए श्री वाहिगुरु। आओ करो गुरु रामदास पातशाह जी दे सोहणे दर्शन, क्योंकि बाणी दा दर्शन हजूर बख्शिश करदे हन, कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़े, प्यार दे नाल सुने, ये गुरु का दर्शन है। आओ जिस प्यार विच गुरु रामदास पातशाह आप

दस बाल तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माझ दी वार विच आप बख्शिश करदे हन कि दस साल बचपन दे बीत जांदे हन, बीस रमण जवान हो गया, हुण घर दे सामान कट्ठे करन विच लग गया। तीसां का सुंदर कहावे, चाली सी पर होए पचासी, चाली ते पंजाह साल दी उम्र तक इसने रात दिन एक करके अपने कार विहार तंदे कीते, पर परमेश्वर दे नाम दा कोई ख्याल नहीं कीता, नहीं उदा शुकराना कीता जिस वाहिगुरु ने अमोलक श्वास बख्शे सन। हुण पंजाह साल तो उत्ते जदों उम्र हो गई, बुढ़ेपा आ गया, सत्रां दा मत ही

जे हुक्म होया त्रैबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इन्हां ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जाण

अंगारे फूल बन गए। ऐथे ही बस नहीं, खंबा तपा के लाल कीता है अगनाल। हुक्म होया हरनाकश दा, प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा। मैं वेखदा तेरा परमात्मा, तेरा परमेश्वर, तेरा राम तैनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वधिया खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते, उस खंबे दे विच्चों सेक आया, क्योंकि अगनाल तपा के लाल कीता होया सी। मन थोड़ा जा डोल गया भगत दा, अंदरों आवाज आई, हे भगवान, जे मैं इस खंबे नू गलवकड़ी च लिया ते मैं ते सड़ जावांगा। कहंदे ने ऐसी एक दंत कथा

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारंग पानी अपना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई पर आप तू मान देहरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत फिरत बहुते जुगहारे हो, फिरत फिरत

मनते पो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभ खेत तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बोल आवे जा।

रोज अरदास करदा सी। ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो, बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया हुआ। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे थां, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जा मुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने। ओ कह लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, तेनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है, तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

आ भाई बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दी पंच दूत मूड पर ठा

कर काम, सिमरन तो बिना इंसान नहीं काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून कोबरे, बिन सिमरन भय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नना, बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आप बिना सिमरन तो खोता बनिया खड़े।

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहा है प्रभु जस मान रहा है और ये धर्म दा मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण कीता आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलदे ने त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलदे ने रहे लिव तार न तावत है भटकना मुक जांदी है लिव जुड़ जांदी है जीवन दा आनंद लैंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेडे गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जमदा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

खंडे खंड प्रचंड पार पूर्ण प्रेम की प्रीत सवारे पार न पाए सके पद्मापति।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बो ताय। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साढ़े भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साद सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगते हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, ताई आखिया

लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना। ए गल क्यों कही, आओ इस बारे

इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी हुईयां,

खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है। आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबां ने छड़ दिता क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्हां कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्हां भी कसमां तोड़ दित्तियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

जिन्ना हाली जूना है तुहाडे साहिबजादियां ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के। समा बीतिया गुरु साहिब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे, साहिबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है। तां गुरु साहिबां ने कपूरे नूं कहा, कपूरे आ साडे पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लै के आ रहा है, तू अपना किला दे तां कि इत्थे असीं उहदे नाल दो हथ कर लईए। कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है, पर औखा समा देखिया तां इह वी मूंह फेर गया। कहन लगा, महाराज मुगलां दा राज है, मैनूं मुगलां कोलों डर लगदा है, जे तुहानूं किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने, वजीर मैनू खत्म कर देवेगा, बादशाह मैनू सजा देवेगा। ता गुरु साहिबां ने कहा, जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी इहो जे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने, सिखी छड्डदे ने, अमृत तों दूर ने।

वे पतल थी जाए सब हराम, जेता किछ खाए इज्जत नहीं, ते जड़ा जीउंदा है समझोदा खाना पीना सब हराम है।

जेड़ा इस इलाके दी सानू जानकारी देवे। लिखे के कपूरे ने अमृत भी छकिया पर गुरु साहब जी हुण इत्थे रहे नहीं। कपूरे ने अपने आदमियों नूं कहा गुरु साहिबां नूं इस इलाके की जानकारी दिओ, अगर वजीर खान दे नाल किधरे लड़ाई हो पवे तां तुसां विच हिस्सा नहीं लैणा।

म्यान विचु कृपान खिची जकारा छड़ेया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार केकेया पाई मैनू आज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं आज ए फैसला कर ले है, हम तो गुरहित

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोउ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कटी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मां सिंह मुदड़े मुंह पे है सेंट दा पे है सह टुटदे ने हुण भाई मां सिंह अरदास पे

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं। हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं।

जाना वारिया जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नू सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती ते सानू राह दसिया ऐ भाई, जेड़ा सिखी गवा के पत धो के जीउंदा है ओदा जीउणा कोई जीउणा नहीं। कोई भी है किसे भी धर्म दा किसे भी मजहब दा जे अपने धर्म च पक्का नहीं, अगर ओदे अमल चंगे नहीं ते ओदा जीउणा कोई जीउणा नहीं। भाई मान सिंह ने जो किया करके दिखाया कि असां तां गुरु वास्ते प्राण देने ने और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए सच्चे पिता, एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे तां कि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीविए, जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे, सरबत दा भला अमृत छकीए, बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए, धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

योदे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हां नूं दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया, उन्हां नूं अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे, रहत बहत विच रवे, गुरु दे उपदेश ते चले।

दुख, मरण का दुख, जीवन का दुख, परलोक का दुख सारा खत्म हो गए। हालत सुख, पलत सुख, नित सुख सिमरनो, प्रेरणा है नाम गोविंद का, सदा लीजै मिटहें कमाने पाप चिराने। चिरा दे पाप खत्म हो जाते ने, जन्मा दे पाप मुक जाते ने, साध संगत मिल मुआ जीजै। राज जोबन बिसरंत हर, इन्हां च पै के असी विछड़ जाने, भुल जाने। माया महा दुख ए महात कहे, महात्मा लोग कहंदे ने ए चीज सानू निरंकार कोलों विछोड़ के दुखी कर दी। आस प्यास रमन हर कीर्तन, आसा करके प्यास रख के निरंकार दे गुण गाइए, हरि कीर्तन च लगीए। ए पदार्थ भागवंत लहे, शरण समर्थ अकाथा गोचरा मंगिया इत्थे। पतित उदाहरण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सर्वत पूर्ण ठाकुर।

लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना है। ए गल क्यों कही, आओ इस बारे

इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने मितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी होईयां, हर लड़ाई विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जित हुई। आखिर औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो फौज भेजी, कुछ पहाड़ी राजियां दी फौज

के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी। सिखा ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह नू महाराज आप किला खाली कर दियो। कई महीने हो गए ने किले विच असी बैठे आ, खादा भी कुछ नहीं, खान नू रिहा भी कुछ नहीं। औरंगजेब मुसलमान है, उसने कुरान शरीफ दी कसम खाधी। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी ये साडे ते हमला नहीं करनगे। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साडे ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां कुछ दिन बीते। भाई मान सिंह इसने बेनती की थी, महाराज पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहिबां ने कहा मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे को आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे, कागज लिया उते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियों समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

गुरु नूं ए बदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। अपने घरां नूं तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नूं पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के आए हां, ते नाल ए वी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के, एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना, को जीवना है, एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, तां असी शुकर करना सी, साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नूं छड के आए हो, मौत तो बहुत डर लगदा, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो, इस साडियां चुनियां लै लो, पग्गां ला दिओ, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दिओ, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा लवांगियां, असी गुरु दी सेवा करांगी। जदों ए गल घरां वालियां ने कई फिटकारां पईयां, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल कीती, दुनिया दे सुख बदले गुरु नूं छड दिता, सिखी छड दिती, पर जिहदी कोई इज्जत नहीं ओहदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है, धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना, असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है, आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहबां ने छड दिता, क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते, किला छड़िया, जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां, गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां,

डर लगते अगर मैं आपनो किला दिता ते मुगला ने बादशाह ने मैनू खत्म कर देना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया कपूरिया भय वाले मना दी सानू लोड़ नहीं, इस तरह कर सानू कोई अपना आदमी दे जेड़ा इस इलाके दी सानू जानकारी देवे। लिखे है के कपूरे ने अमृत भी छकिया पर गुरु साहब जी हुण इत्थे रहे नहीं। कपूरे ने अपने आदमियों नूं कहा गुरु साहिबां नूं इस इलाके की जानकारी दिओ, अगर वजीर खान दे नाल किधरे लड़ाई हो पवे तां तुसां विच हिस्सा नहीं लैणा।

म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़ेया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार केकेया पाई मैनू आज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं आज ए फैसला कर ले है, हम तो गुर हित दे हैं प्राण विच संग्राम करें अरहान के हुण वेला आ गया है।